कभी हंसाता है, कभी नगमे सुनाता है, दीन दुनिया का हाल भी बाखुदी फरमाता है, रेडियो दोस्त की तरह साथ निभाता है। सुनते रहिए रेडियो निकल 90.4 FM, आवाज तुमसा।

पल जिंदगी का बस धुआं है, न जाने सुकून ये जिंदगी अब कहाँ है। वही सुकून तलाश करेंगे हमारे साथ और सुनेंगे कुछ दिल को छू जाने वाले गाने। सुनते रहिए रेडियो नगर 90.4 FM, आवाज तुमसा।

0: श्रद्धेय गुरुदेव का ध्यान, विरुद्धि की संपूर्ण भक्ति करने की आज्ञा अनुज्ञा मार्गदर्शन ग्रहण करें उनसे। अपने आप को जम्बू स्वामी के रूप में इस वरदानों को ग्रहण करने के लिए, विरुद्धि के वरदानों को ग्रहण करने के लिए सुधर्मा स्वामी के चरणों में उपस्थित करते हुए धर्मासन ग्रहण करेंगे।
1: सुधर्मा स्वामी की अनुभूति के तीर्थंकर महावीर को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए सुधर्मा स्वामी ने बाहर की बहुत सारी उपमाएं दी। सुमेरु पर्वत, सागर, शालमले वृक्ष, इक्षुरस, स्वयंभू रमन, बहुत दी। लेकिन सुधर्मा स्वामी को लगा कि इन बातों से, पदार्थ के माध्यम से तीर्थंकर परमात्मा के तीर्थंकरत्व का सही तरीके से अनुभूति नहीं कर पा रहे। इस अनुभूति के साथ आज की गाथा को लेंगे। नाना न सेठम

भगवती सूत्र में एक चर्चा चली कि प्राणी क्यों दुखी है, किस कारण से दुखी है। तो सबसे पहला कारण बताया गया कि भय से दुखी है। जीवन में जितनी भी समस्याओं का जन्म होता है, जीवन में जितनी भी स्खलनाएं होती, गलतियां होती, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली चाहे जैसे भी जो भी रिलेशन में इमोशन में जितने भी पाप होते हैं, जितनी भी गलतियां होती हैं, उसके मूल कारण को यदि खोजोगे तो वहां आपको एक ही अनुभूति मिलेगी, वो भय। भय मुक्त जीव पाप नहीं कर सकता है और भय युक्त जीव शत प्रतिशत धर्म नहीं कर सकता है। ये सारा संसार जो चलता है ये भय के आधार पर चलता है, ये भय निकल जाए तो संसार की एक भी व्यवस्था गतिशील नहीं रह सकती है। पूरे आपके मन पर, मेरे मन पर, मैं भी उसी में हूं, एक भय। और सबसे बड़ा भय कौन सा रहता है आपके मन में? लोग क्या कहेंगे। यही सब भय गजब का है। अकेले खड़े होने की हिम्मत ही नहीं हो पाती है। और होने की तैयारी भी करो तो आपसे प्यार करने वाले लोग ही आपको भयभीत करते हैं। गहराई से देखने जाओगे तो दुश्मन का भय कम लगता है, अपनों का भय, हाँ अपनों का भय ज्यादा लगता है कि वो नाराज नहीं हो जाए, वो कहीं मुझे छोड़ के नहीं चला जाए, कहीं मैं अकेला नहीं हो जाऊं। ये अकेलेपन का भय। और इसलिए सुधर्मा स्वामी ने जब परमात्मा की ओर अनुभूति करते हुए देखा और साथ में उनको महसूस हुआ, देने जैसी कोई अनुभूति ही किसी को, कि दान की ये डेफिनेशन आचार्य उमा स्वाति ने करी, स्वस्य अतीव स्वर्गो दानम, स्वयं का जो है स्व का उत्साह उत्सर्ग करना उसको दान कहते हैं। जो आपने संकलन किया वो आपका नहीं है, जो संग्रह किया वो आपका नहीं है। नौ प्रकार के पुण्य में नौ प्रकार के दान गए, अन्न दान, पान दान, शयन दान, लयन दान, बहुत सारे दान गए, लेकिन उसमें सर्वश्रेष्ठ दान हुई है नौ पुण्य में भी, तो नमस्कार पुण्य, एक नमस्कार ही है, एक सम्मान ही है कि जो आप किसी को, जो आपका है, ये विनय, ये आपका है, तो सर्वश्रेष्ठ यदि दान कोई हो सकता है तो दानान सेटम अभयम पयानम, अभय को प्रदान करना है। और अभय को हम तभी दे पाएंगे जब अपने पास अभय होगा। यदि मैं बाहर से भय को लेता हूं तो मैं भय को ही दूंगा। जो मेरे अंदर होता है वही मैं बाहर से लेता हूं, वही मैं बाहर देता हूं।
जो मेरे अंदर नहीं है उसको मैं ले भी नहीं सकता हूं और दे भी नहीं सकता हूं। तो भय अंदर में है, एकेंद्रिय से लेकर तो देवलोक तक के सारे जीव किसी से पीड़ित है, किसी से परेशान है, तो भय से परेशान है। और सबसे ज्यादा भय, पहला जो भय बता मैंने कि लोग क्या कहेंगे, और दूसरा जो भय, भय तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन एक्सट्रीम भय किसी को लगता है तो मरने का भय लगता है। अब तुम कितने डरो मरने से, मरना तो है ही है, डरते हुए मरना कि सजगता से उसको स्वीकार करना यह अलग विषय है। कल से शिविर शुरू हो रहा है, कल से है ना, 14 तारीख, 14 तारीख अरब में जगह एक अलग शिविर है, आर्ट ऑफ डाइंग, मरने की कला, मृत्युंजय, समाधि शरण, जिसको आप संलेखना के नाम से जानते हो, और वो आप तब तैयारी करते हो जिस समय नो होप्स, जिस समय सब कह दे कि अभी कहीं संभावना नहीं है, डॉक्टर ने हाथ टेक दिए, सबने हाथ टेक दिए, उस समय अंतगण सूत्र में आपने सुना है कि संलेखना के लिए जो भी तपस्वी गए हैं वो चल करके गए, बीमार में कोई संतरा हुआ नहीं। तो एक संलेखना है, आप रोज भी संतरा ले सकते हैं, संलेखना ले सकते हैं, मरने की तैयारी। जिससे तुम बच नहीं सकते हो उसकी प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। और हम इतने समझदार लोग हैं, जिससे बच सकते हैं उसकी तैयारी करते हैं, जो नहीं भी हो सकता ना हो भी सकता है उसकी तैयारी पक्की करते हैं, लेकिन जो हुए बिना रहना नहीं है उसकी तैयारी नहीं करते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि वहां भी भय से मुक्त होना चाहिए। और तीर्थंकर महावीर के तरफ जब सुधर्मा स्वामी उनको महसूस करते हैं तो उनको गहराई से एक अनुभूति होती है, जो सबसे पहले परमात्मा के चरणों में जब सुधर्मा स्वामी पहुंचे, 5वें नंबर पर पहुंचे, उस समय भी उनके मन में भय था कि जैसे इंद्रभूति गौतम के अंदर की जिज्ञासा को, संशय को, अंतर की बीमारी को, संशय क्या है, अंदर की बीमारी जो हम सबसे छिपा के रखते हैं, अज्ञान की बीमारी। हम बाकी सब अपने अंदर का स्वीकार कर सकते हैं लेकिन अपने अंदर का अज्ञान स्वीकार नहीं करते। और जैसे जैसे दोनों दुनिया की निगाह में उच्च होते जाते हैं वैसे वैसे स्वयं का अज्ञान स्वीकार करना बहुत मुश्किल जाता है। अब जिसके पास 500 शिष्य हो और 500 शिष्य का कोई गुरु हो तो उसको अज्ञान का स्वीकार करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो इंद्रभूति गौतम गए तो इंद्रभूति गौतम के अज्ञान को प्रकट किया गया, बाकी सब गए। अब सुधर्मा स्वामी भी जा रहे हैं, अब उनके मन में भी एक डाउट तो है, अब वो डाउट आज तक उन्होंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, किसी को पूछा भी नहीं। यदि आप कभी गंधर्व की चर्चा का अनुसंधान करोगे तो यदि 11 गंधर्व परस्पर में बातचीत कर लेते ना, इंद्रभूति अग्निभूति को बता देते कि उसके मन में क्या अज्ञान है, अग्निभूति बता देते कि इंद्रभूति को मेरे मन में यह अज्ञान है, तो दोनों एक दूसरे का समाधान कर सकते थे कि जो बीमारी इंद्रभूति को है वो बीमारी अग्निभूति को नहीं, लेकिन वो मैं उरा नजर में गिर जाऊ ना
वो क्या कहेंगे, इनको इतना भी पता नहीं? तो यह अज्ञान का भय उनके मन में था कि मैं सबके सामने शिष्य है, साथ में जो शिष्य मेरे तरफ इतने गौरव से देखते, इतने आदर से देखते हैं कि मेरे गुरु जैसा दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है। शिष्य के मन में एक धारणा पक्की रहती है कि मेरे गुरु जैसा दूसरा गुरु नहीं, ऐसा रहता है। ऐसे शिष्य के सामने सुधर्मा स्वामी जा रहे हैं वहां पर, उनके मन में भी था, लेकिन जैसे परमात्मा को देखा तो भय समाप्त तो हो गया। आप सोच सकते हैं स्वयं के विषय में, मैं सोचते रहता हूं मेरे विषय में कि मैं कहीं पहुंचता हूं तो लोगों को डर लगता है कि वो डर से फ्री होते हैं। मैं जानता हूं कि मैं जहां पहुंचता हूं मैक्सिमम लोगों को डर लगता है, डर लगता है। अब मैं कोई डरावना नहीं हूं, मैं कोई भयंकर नहीं हूं, लगता है। अब वो लगता है तो उसको क्या करे, अब है ना, उसको क्या करे। आदर का लगता है, धन्यवाद है आपको, आपने बहुत सुंदर शब्द दे दिया, लेकिन जो डरते हैं तो उनको एक बार जाकर के पूछो, उनको आदर से डर लगता है कि हमारा सब डांटने का डर लगता है। हाँ, वो देखो, वो डांटने का डर लगता है, वो रिस्पेक्टफुली डर नहीं है। रिस्पेक्टफुली डर में डांटने का स्वागत होता है। जिसके प्रति रिस्पेक्ट होता है ना, वो यदि आपका कान पकड़े तो अपन स्वागत करते हैं। हाँ, कोई मिला है मेरी गलती बताने वाला है, कोई गलती सुधारने वाला मिला है, वो उसको डॉक्टर के रूप में लेता है। लेकिन जब लगता है कि नहीं, अबे आप लोग कोई खरों को नहीं, तो वो डर जो है वो रिस्पेक्ट का डर नहीं। आपने कहा मैं स्वीकार करता हूं, आपको धन्यवाद देता हूं, है ना, लेकिन वो नहीं होता है। लेकिन जैसे परमात्मा को देखा भय निकल गया। और जब फिर वो देखने लगेंगे तीर्थंकर महावीर के पूरी जीवनचर्या की तरफ देखने लगे, तो तीर्थंकर महावीर ने पूरे अपने जीवन में क्या किया, जहां जहां भय का साम्राज्य था, जहां जहां आतंकवाद था, जहां जहां दहशत थी, जिस जिस बाप की दहशत थी, उस दहशत को दूर करने के लिए तीर्थंकर परमात्मा ने वहां जाकर के अभय का दान दिया। चंडकोशी की दहशत थी और परमात्मा वहां गए और दहशत समाप्त हो गई। अर्जुन मलिक की दहशत कितनी भयंकर दहशत थी कि राजा श्रीनिक भी बाहर आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। भगवान महावीर गए और अर्जुन मलिक की दहशत समाप्त हो गई। जहां जहां परमात्मा गए, लोगों के मन में, कई लोगों के मन में परलोक का भय था और परमात्मा से बात कर ली तो भय निकल गए। राजा श्रीनिक को नरक का भय लगता था, राजा श्रीनिक को नरक का भय लगता था। जब कहा परमात्मा ने कि तू नरक में जाएगा तो डर लगा, लेकिन जब परमात्मा ने उसका भय समाप्त कर दिया, नरक से नहीं बचाया, नरक में तो गए लेकिन नरक का भय समाप्त हो गया। वासुदेव को जब वासुदेव ने पूछा कि तू नरक में जाएगा तो बेचारा तो बिल्कुल हालत ही हो गई, लेकिन परम अरिष्ट ने मैंने तुरंत कह दिया आर्थ ध्यान मत कर, तो तीर्थंकर होने वाला है। श्रेणी को भी उन्होंने कहा कि तेरे जिंदगी में एक डार्क जोन है, लेकिन तू उससे निकल करके सूर्य बनने वाला है। डर निकल गया। कितने लोगों को तीर्थंकर महावीर ने अभय का दान दिया। सबसे बड़ा दान उन्होंने दुनिया को कोई दिया तो अभय दान दिया है। इसलिए नमोथुनम में आप
यदि नमोथुनम का पाठ आपको आता है तो बड़ी मजेदार बात है उसमें। वहां जीव कोहानम शब्द नहीं है, जीव माननम शब्द नहीं है, जीव मायानम शब्द नहीं है, जीव लोहानम शब्द नहीं है, वहां एक ही शब्द है, नमो जिनानम जीव भयानम। मैं उन योद्धाओं को नमन करता हूं जिन्होंने भय को जीत लिया। तो सबसे बड़ा दान कुछ होता है तो अभय दान। मैं हर साल कहता हूं, जब भी मौका मिलता मैं कहते रहता हूं, एक बार अपने घर के तरफ देखो, एक बार अपने परिवार के तरफ देखो, अपने परिवार में भय का राज्य है कि अभय का राज्य है। भय का राज्य, क्या मजा आ जाए ना कि कम से कम अपने घर में हम एक प्रयास करें कि घर वालों को घर वालों से डर नहीं लगे। लंबी फिलॉसॉफी हो, आप उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिलॉसॉफी सत्य है वो। जिससे डर लगता है उसको मैं कभी दोस्त समझता नहीं हूं। ऊपर ऊपर सुपरफेशियल में उसको दोस्त ले लेता हूं। जिससे डर लगता है उससे मैं दूर भागूंगा, नजीक नहीं जाऊंगा। इस सामान्य लॉजिक को समझ लेंगे तो मुझे आगे चलने में आसानी जाएगी। जिससे आपको डर लगेगा उसके पास आप जाएंगे तो उससे दूर जाएंगे, और जिससे दूर जाते हैं उसको दुश्मन कहते हैं, और जिसके पास में जाते हैं उसको दोस्त कहते हैं। यदि परिवार में से भय समाप्त तो हो जाए, एक दूसरे का डर लगना समाप्त तो हो जाए, आई नो वो एक दिन का काम नहीं है, लेकिन एक संकल्प पूर्वक लक्ष्य पूर्वक प्रयास करोगे तो हो सकता है। मैंने वो प्रयास किए, संतों के साथ किए, उसमें से एक ही यहां बैठा हुआ है। जब मैं 2016 के चतुर्मास के लिए चेन्नई जा रहा था और कराड़ में मेरा ऑपरेशन हुआ था, और उसके बाद मैं जब आगे चल रहा था तो ध्यान करके उठा तो पुछ सनम की वो पंक्ति, पुछ सनम चलता रहा मन में, अभयंकर भी अनंत चक्षु, वो एक पंक्ति चली

कि अपन क्या कर रहे हैं। और ध्यान में आया कि सारे संत के लिए मैं भयंकर हूं, दो तीन दिन तक सोचता रहा कि संत मेरे साथ में है, मुझे वंदना करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, आदर से देते हैं, है ना, लेकिन अंतर मन में उनको प्रवीण ऋषि को लेकर के भय है और मुझे भी भय उनका कि कठे छोड़ने नहीं चले जाए, कठे उद्योग नहीं कर बैठे। मैं मेरी बात कर रहा हूं, रियल बात कर रहा हूं। ये तीन चार दिन मन में अच्छी तरह से वहां पो किया और उसके कारण से मैंने कहा अपन एक दूसरे प्रति ओपन नहीं हो पाते। भाई सबसे पहला काम क्या करता है, आपको ड्रामा करने को लगाता है, आप जैसे वैसे सामने आते ही नहीं भाई लगा दो। गांव का नाम मुझे याद नहीं है लेकिन वो चल रहा था, कर्नाटक के में चल रहा था। एक दिन दोपहर में चार जने थे, नहीं क्या चार जने थे, उनको दोपहर में लिया बैठा। मैंने कहा आपको मेरा डर लगता है। नहीं नहीं मैं सब था, डर नहीं लगे, नहीं लगे भैया। मैंने माना ये भी वाक्य थे बोल रहे हो, डर से बोल रहे हो। फिर मैंने साथ में दूसरा वाक्य में जोड़ दिया, मुझे भी तुम्हारा डर लगता है। तो ये काम करते, मैंने कहा तुम मुझे मत डराओ, मैं तुमको नहीं डराता। मेरी ओर से तुमको मैं वचन देता हूं कि मैं यहां से आगे तुमको डराऊंगा नहीं। तुमसे कुछ भी हो गया, कुछ भी तुमने किया, तो मैं तुमको डराऊंगा नहीं, पक्का। अब वो देखे मेरे मुंह की तरफ प्रवीण ऋषि और डराए नहीं, पर सामने बोल नहीं सके अंदर डर। वो इनके मन में का भय निकलने के लिए 6 महीने लगे। कितने महीने लगे, वो देखते रहे इधर उधर उधर उधर। मैंने छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, आप उसको पूछ सकते, मैंने छोड़ दिया कि सामने वाले को लगे कि महाराज साहब के अपने की आवश्यकता है तो बोलना। अपने से अपने डर के कारण से अपने से छिपकर कुछ करते, छोड़ दिया, टोटली छोड़ दिया। और चेन्नई चौमासे में एक संत के द्वारा बिल्कुल आउट ऑफ बॉक्स मिस्टेक हो गई और मुझे पता चली, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। ना आज भी इन संतों को पता नहीं है, मैंने कुछ नहीं बोला। एक दिन दो दिन तीन दिन मैं उम्मीद कर रहा था कि वो संत मेरे पास आकर के बोलेगा, लेकिन 3 दिन वो बोला नहीं। तो 4th दिन जब ये प्रतिक्रमण की वंदना करने के लिए आए तो सबको जाने दिया, उसको बैठाया और उसको कहा भैया ऐसा ऐसा हुआ है, तुम मुझे कहते उसी दिन तो मैं उसमें से सोल्यूशन निकाल लेता। और मैंने उसका ये सोल्यूशन निकाल दिया, ये बता दिया उसको। मैं इंतजार कर रहा था कि मैंने तुम मेरे पास बोलोगे, तुमने नहीं बोले, लेकिन तुम टेंशन लेस हो जाओ, उस समस्या का समाधान हो चुका है। अब वो नीचे गए संत के पास रोते रोते और कह गए महाराज साहब और ऐसा हो सके। तब इनको पता चला कि महाराज साहब अभी भी उसको डर लगता है, थोड़ा सा लगता है। मैं डांटता नहीं हूं लेकिन वो पुराना मेमोरी में पड़ा हुआ है ना कि हाँ कभी भी आ सके, कभी भी आ सके। लेकिन वो कह सकता है कि मैं जब भी उसको बोलता हूं तो शांति से प्रेम से ही बोलता हूं कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ऐसा है। पहले जैसे रिएक्शन अब नहीं करता, लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में पुराना प्रवीण ऋषि है तो उसका मेरे पास कोई उपाय ही नहीं है, है ना। तो दानाना सेठम अभयपना सुधर्मा समय महसूस कर रहे हैं कि परमात्मा जहां पहुंचे वहां का भय समाप्त हो गया, जहां पहुंचे वहां भय समाप्त हो गया। तो जैसे सारे दानों में श्रेष्ठतम दान कोई है तो अभय दान है।
सच्चे सुवा अनवज्जम वयंती। सच बोली है लेकिन परमात्मा ने सत्य बोलने के लिए कंडीशन लगा दी। क्या बोलने के लिए? सत्य बोलने के लिए। अनकंडीशनल ट्रूथ नहीं बोलना, कंडीशनल ट्रूथ बोलना। कंडीशन क्या लगाई? कि जिसके कारण से पाप नहीं हो, जिसके कारण से पाप नहीं हो, कोई परेशान नहीं हो। पाप नहीं हो इसका मतलब कोई परेशान नहीं हो। जो सत्य बोलने के कारण से सामने वाले के मन में भय का जन्म नहीं हो, ऐसा ही सच बोली है कि जिस सच बोलने के कारण से सामने वाला व्यक्ति डरे नहीं। अनवज्जम वयंती, सत्य में वही सत्य कल्याणकारी है, वही सत्य सुंदर है, वही सत्य परम कल्याणकारी है कि जिस सत्य को जानने के बाद, सुनने के बाद सामने वाले को डर नहीं लगे। इसलिए श्रावक के दूसरे व्रत के अत्याचार में गया है कि किसी का रहस्य प्रकट नहीं करना, किसी का रहस्य प्रकट नहीं करना। किसी का रहस्य प्रकट होने का सबसे बड़ा डर रहता है, सबके अंदर में रहस्य है। कहीं ना कहीं अपन सगो छिपाने रखा रहे। छद्मस्ता, छद्मस्ता का मीनिंग ही है जो छिपाने में मास्टर है। छद्म यानी छिपाना, तो किसी छद्मस्त ने दावा नहीं करना, नहीं नहीं मारा कने कई को नहीं छिपाऊ जैसो, अरे तो किवली हो जाता। छिपाने जैसा कुछ नहीं रहे तो सर्वज्ञ हो गए। छिपाने जैसा हमारे सबके पास कुछ ना कुछ है कि जिसको हम ओपन नहीं करना चाहते। वो किसी का ओपन मत करो, और ओपन करो तो इस तरीके से करो कि जैसे भगवान महावीर ने इंद्र गौतम का मर्म प्रकाशित किया, रहस्य प्रकाशित किया, लेकिन रहस्य प्रकट करने के बाद भी इंद्रभूति गौतम को डर निकल गया। मर्म प्रकाशित इसलिए नहीं करना कि सामने वाले को डर नहीं लगना चाहिए। तो सत्य भी पापकारी हो जाता है, सत्य भी पापकारी हो जाता है जब हम उसको क्रोध से, अहंकार से, माया से, लोभ से बोलते हैं, एग्रेसिव होकर के बोलते हैं, अपने आप को ऊंचा बताने के लिए बोलते हो, स्वयं का रुबाब जमाने के लिए बोलते हो। तो ये सत्य बोलने वाले के लिए भी अकल्याणकारी है और सुनने वाले के लिए भी अकल्याणकारी है, दोनों के लिए मुश्किल है। इसलिए परमात्मा ने कहा कि सत्य वही बोली है जिसके कारण से कहीं पर अंधियारा नहीं जन्मे, पाप नहीं जन्मे, अपराध नहीं जन्मे, ड्रामा नहीं जन्मे। उसको परमात्मा सुधर्मा स्वा सच्चे स्वा अनवज्जम वयन्ति। और तीर्थंकर महावीर ने पूरे पूरे लाइफ में ऐसा ही सत्य बोला है। जानते सब कुछ थे, जानते सब कुछ थे, तुम्हारे मन में क्या चल रहा वो भी पता था, तुम्हारे मन में कल क्या चलेगा वो भी पता था, लेकिन बोलते नहीं थे। बोलते वही सत्य थे कि जिसके कारण से सामने वाले जिंदगी में सुधार हो जाए, सामने वाला व्यक्ति सुधर जाए, सामने वाला व्यक्ति कल्याण के रास्ते पर चले, ऐसा ही सत्य बोलते थे। ऐसा सत्य उन्होंने कभी नहीं बोला कि जिसके कारण से सामने वाला परेशान हो जाए। और ऐसा ही सत्य का वो कहते थे कि दशकालिक सूत्र में तो यहां तक बात गई, चोर को भी चोर नहीं कहना। क्या? चोर को भी तेनम तेनेती, कानम कानेती, पंडगम पंडगेती, नो एजा। काने को काना नहीं कहना, नामर्द को नामर्द नहीं कहना, चोर को चोर नहीं कहना। आपको लगेगा ये क्या बात है, ऐसा थोड़ा होता है, लेकिन ध्यान में रखना, चोरी 24 घंटे नहीं करता है वो,
चोरी 24 घंटे नहीं करता है, लेकिन आप उसको चोर 24 घंटे कह रहे हैं, और टाइम टू टाइम ही चोरी करता है। बाद में दिन में तो क्रोधी किन, ओ क्रोधी है, ओ क्रोधी है, अरे 24 घंटे कौन गुस्सा करे? जब वो गुस्सा करे तब आप उसको क्रोधी को ओके, जब वो अहंकार करे तब उसको अहंकार कहो ओके, लेकिन जिसमें वो अहंकार नहीं कर रहा है, अरे वो तो घनो इगोइस्ट है, ये क्या कर रहे हैं आप? और कोई भी 24 घंटे गुस्सा नहीं करता है। इसलिए परमात्मा ने कहा इनका, जिसके कारण से उसका दिल परेशान हो जाए ऐसा सत्य नहीं बोलना। ये दो नियम थे, घर में से निभाया ना तथा घर में वास्तु शांति करने की जरूरत उसको नहीं था। घर में एक पॉलिसी होनी चाहिए कि घर वालों को घर वालों से डर नहीं लगे, लेकिन आम बार हालत अपनी दूसरी है, अपना ने घर वाला से डर लगे, बाहर वाला से डर नहीं लगे, नहीं लगे ना। बस में बैठते हो, ट्रेन में बैठते हो, कहीं पर भी जाते हो, कोई अनजान आदमी मिलता है तो इतनी लंबी खुले बातें करो थे, इतनी खुले बातें थे घर वाला साथ कभी करी? मालूम है वो अबर सुनी लगा दे निकल जाए लगा, विषय टेंशन तो विषय को नहीं। तो ये दो नियम कैसे कर सकते हो सोचो। मैं तो कहता हूं हमेशा कि घर वालों ने घर में बैठ करके पॉलिसी तय करनी चाहिए ट्रांसपेरेंसी की, कुछ भी किसी से गलती हो जाए तो एक ही आश्वासन देना चाहिए, कुछ भी हुआ तो घर तेरे साथ है।

जिसमें पूरा समाज मेरे खिलाफ था, पूरी कॉन्फ्रेंस मेरे खिलाफ थी। इसी परीक्षा बोर्ड पर जम करके मीटिंग हो रही थी, लंबे लंबे तारे तोड़े जा रहे थे। और मोहनलाल जी चोपड़ा ने मुझे कहा कि तुम रूम में कहीं छिप करके बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे पास खैर नहीं है। हाँ मालूम मुझे, लेकिन मैंने रूम में बैठने से इनकार कर दिया। मैंने बरंडे में आकर के बैठा मैं, और जब वो गुरुदेव के पास आए तो मैं वहां खड़ा रहा। किसको कहते हैं अभयंकर? क्यों गुरुदेव को लेकर के तड़पता है ये दिल? और आए सारे और बोले गुरुदेव के पास मेरे खिलाफ, प्रस्ताव पास करके लाए थे, एक मत से प्रपोजल पास करके लाए थे कि इसको हटाओ यहां से। गुरुदेव ने केवल एक वाक्य बोला है, तुम्हारे बेटे से गलती होती है तो तुम उसको घर से निकाल देते हो क्या? सिंगल सेंटेंस। और सारे चुपचाप निकल गए थे। इसको कहते हैं अभयंकर। यूं थोड़े उन पर कुर्बान होते हैं। और वहां ये बोलने के बाद वापस मेरे साथ कोई जिक्र नहीं कि मिथनी समय बचा लियो, अगली बार ध्यान करना थी, एक बार नहीं। इसको कहते हैं सच्चे सुवा अनवज्जम वयंती, तवे सुवा उत्तम बंब चेरा, तप में श्रेष्ठतम तप कोई है तब ब्रह्मचर्य का तप है। कि बाकी सारे तपों में तुम्हें कई भूख के साथ लड़ना होता है, भूख को सहन करना होता है, रस पर विजय प्राप्त करना होता है, लेकिन ब्रह्मचर्य में तुम्हें तुम्हारे वासना पर विजय प्राप्त करना होता है। इसलिए ब्रह्मचर्य को श्रेष्ठतम तप कहा। भूखे तो हम नरक में रह करके आए, तो भूख पर विजय प्राप्त करना इसको आप लोग तप कहते हैं। वो तप नॉर्मल तप है, सब जानते हैं, लेकिन जब सुधर्मा स्वामी देखते कि तप सर्वश्रेष्ठतम तप कौन सा है, भूख को कंट्रोल में लेना तप सबसे बड़ा तप, तप है वो, तप नहीं ऐसा नहीं है। भूख को कंट्रोल में करना ये भी तप है, अनशन करना भी तप है, नहीं तो गलत फहमी में जा बोला थे, ये तप है। लेकिन सुपर तप क्या है, द ग्रेट तप क्या है, द एक्सट्रीम तप क्या है? तो बोले वासना को जीत लेना, वासना से मुक्त हो जाना, तभी सो उत्तम बम्ब चेरम। और इतना बढ़िया तप है वो। और एक बार किसी ने वासना पर विजय प्राप्त कर ली तो स्थूली भद्र हो गया, वो जय सेठाने विजय सेठ हो गया। इसलिए और परमात्मा की तरफ वो देखते हैं कि परमात्मा का जो जीवन है वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। तुम्हारा तुम जितने भी जिन जिन को सुंदर कहते हो, वो तीर्थंकर महावीर के सौंदर्य के सामने तो जुगनू भी नहीं है। लेकिन और बल भी उतना ही है, वीर भी उतना ही है, तेज भी उतना ही है, स्वस्थ काया है, उसके बावजूद वासना का स्पंदन नहीं है। तवे स्वा उत्तम बम चेरम लोगो तमे समने नाय पुते, ऐसे पूरे लोक में श्रमणों में तीर्थंकर महावीर श्रेष्ठतम है।

0: यह बूंद एक दिन के लिए पचकान ले सकते हैं कि आज मैं किसी को डराऊंगा नहीं और किसी से डरूंगा नहीं। प्रयोग करके डरा उन्होंने, आख्या से भी नहीं, इशारा से भी नहीं। सुधार ले उन्हें, सुधार ले उन्हें, काउंस कर ले उन्हें, चार लोगों से ध्यान कर ले जो है ना। तो सुनते नहीं करने ना, पाए चिंता कर लेना, प्रायश्चित कर लेना है ना। और प्रायश्चित है, कुछ भी भावात्मक गलती होती है तो उसी समय चार लोगों से काउंस कर लीजिए, कैसर के प्रायश्चित है, कर सकते हैं है ना। किसी को डराना नहीं किसी को। और मैं आपको बहुत प्रेम से कह रहा हूं, मैं अभी तक पूरा नहीं हुआ हूं, मैं पूरा नहीं हुआ हूं, लेकिन जितना हुआ उतना आनंद ले रहा हूं मैं। जितना मैं भय मुक्त हुआ हूं, जितना मैंने लोगों को भय देना कम किया है, उतना मैं आनंद में हूं, आनंद में हूं। जिससे भय लगता है उसको लोग टेररिस्ट कहते हैं, ध्यान में रख जो। हाँ, देवता से भय नहीं लागे, राक्षस से भय लागे। देव तो उसी को कहते कि जिसको देख करके भय भाग जाए, है ना। जिससे भय लगे उसको देवता नहीं कहते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति ने माँ बाप को कहा कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। माँ को कहा तो देव हो जा, देव है नहीं, वो होने के लिए कहा है। पिता को कहा कि तू देव हो जा, तू देव है नहीं। और जिस दिन माँ बाप देव बन जाएंगे ना, जिस दिन माँ बाप देव बन जाएंगे, संतति उनकी पुजारी पक्की हो जाएगी। डर के मारे की भी पूजा ड्रामा पूजा है, और भय मुक्त होने के बाद जो पूजा होती है वो असली पूजा है। गुरुदेव की क्यों पूजा करते लोग, क्यों याद करते, क्यों मत्था टेकते, क्यों उनको, उनके पास छोटे बच्चे को भय नहीं लगता था, किसी को डर नहीं लगता था। तो ऐसा जीवन अपना बने। विरुद्धी की आराधना चल रही है, अब आगे चलनी आराधना 20 तारीख से आराधना चलनी है। 18 तारीख को जिनेश्वरी की भक्ति यात्रा का सत्ता कॉलोनी से 4 ट्रस्टी मिलकर के नियोजन कर रहे हैं। कितने हैं? 1, 2, 3, 4 है ना। उसमें से 1 यहां खड़ा है, 2 है खड़ा है, 2 है, ये 4 ट्रस्टी खड़े हो रहे। मैंने उस दिन कह दिया, हमेशा एक जना काम करता है भक्ति यात्रा का, पिछले बार भी एक जने ने किया था, सुभाष बाबू था ने, हमारा चोड़िया परिवार यहाँ पर आया हुआ है, उन्होंने भी किया था। अब इस बार 4 है, 4 इंजन लगने के बाद गाड़ी की रफ्तार कैसे होनी चाहिए, 4 पट, बिल्कुल 4 पट है ना। ऐसा लगना चाहिए, ऐसा उसको बूस्टर डोज मिलना चाहिए कि 21 दिन तक वापस बूस्टर डोज की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना? वापस खुराक देवन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वो तीसरा भी आ गया और चौथा भी आटे चाहिए, लेकिन लारे बैठे रहो, आगे इलाको ना भरो। अरे अब तो मैं होता ना तो 8 तो निकल गए। अच्छा, लेकिन इनका, इनकी ये 4 ट्रस्ट का एक दिन है, तुम्हारा एक एक दिन है। एक एक परिवार को, चाहे नाम इनके पास बुक हो गए होंगे, तो एक दिन में 2 कोंश भी आ सकते हैं। मैंने अभी कहा है उनको, कोई गोत्र छूटना नहीं चाहिए, कोई परिवार छूटना नहीं चाहिए। और पूरी अच्छी तरह से तैयारी करिए, आप होस्ट हो जाए है ना। आप यजमान है उस दिन के। अब बुरा परिवार कभी यजमान है? चौबीस तारीख को, 22 तारीख को गांधी, 25 तारीख को गांधी है, 22 तारीख को बाणगंजा कोठारी है, 20 तारीख को कौन है भैया? गुंदेचा परिवार है। जो जो तारका है उनमें आपको और किसी को साथ में जोड़ना हो तो खुला है, किसी को भी साथ में लीजिए। किसी को बाबू सेठ को लेना हो तो उत्तराधीन के कार्यक्रम में मानधना को साथ में ले सकता है, मेरे कोई मना नहीं है। लेकिन मानधना अकेला नहीं आना चाहिए, और एक दिन नहीं आना चाहिए, वो 21 दिन आना चाहिए, वो देख लेना जरा। नहीं तो एक दिन आईला तिलक निकाल लेला निकल जाएगा, बाद में तिलक देख तो चले जाओ ना। तो ये अनुष्ठान अपने को उत्तराध्यन का, जिनेश्वरी घर घर जिनेश्वरी विश्वेश्वरी, उत्तराध्यन सूत्र की आराधना जम करके मस्ती से भक्ति से अवभाव से ऐसी करनी कि दुनिया को भी लगे कि इनके पास कोई ऐसा आगम है कि जिस पर ये कुर्बान हो सकते हैं, जिसके लिए किसी की सीमा तक पहुंच सकते हैं। पुजारी जितने जोर से पूजा करेगा उतना ही भगवान बड़ा होगा, है ना? पुजारी के हाथ में भगवान को छोटा करना के बड़ा करना है। हाँ, यदि आपको इतिहास उठा करके देखना हो तो देख सकते हो, ये पंढरपुर का पांडुरंग जो है वो ज्ञानेश्वर मावली जैसा पुजारी मिल गया तो पूरी दुनिया का हो गया, है ना? तो पुजारियों पर तय है। तो उत्तराध्यन सूत्र के तुम सारे ऐसे पुजारी बनो कि पूरा नगर उसकी आराधना में जुड़ जाए, ऐसी मंगल भावना के साथ। 18 तारीख का सत्ता कॉलोनी से चलना है ऐसा उनका आग्रह है। मैं भी कहूंगा, हाँ मैं भी सबको कहूंगा कि 18 तारीख के उस भक्ति यात्रा में बड़े प्यार से बहुत आस्था से भक्ति से जुड़िए। एक बार उत्तराध्यन सूत्र की भक्ति प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन करिए, और शक्ति प्रदर्शन में नगर वाले तो हाँ है ना। जब भी मैं नगर आया हूं, जब भी नगर आया हूं, रोड शो पक्का किया है नगर वालों, और इस समय का प्रवेश का रोड शो तो इतना जोरदार किया तुमने। अरे भगवान महावीर के पुजारी का रोड शो ऐसा करते हो तुम तो भगवान महावीर का रोड शो तो हाँ यस है ना। ऐसा रोड शो किया तुमने कि पुना वाले कहते रह गए कि पुना नगर वाले हमारे आगे निकल गए। तो यदि प्रवेश के रोड शो में आगे निकल गए तो उत्तराधीन में तो आओ क्या क्या बाहर है ना, रेंज के बाहर। हाँ बाबा, ये भक्तामर का अनुष्ठान, भक्तामर के अनुष्ठान के आगे निकल जाए। भक्तामर के अनुष्ठान को तो बाबू सेठ 4 जने मिलकर पूरा कर देंगे।
1: 8,000 लोग थे उस वक्त, बाबू सेठ आएंगे हमारे पास, तुम देखो अभी
0: नजर। हाँ बाबू सेठ देख तो रीला खेल है ना। तो आइए इस इन सारी बातों के साथ आज जिनके कारण से अरमिज्जा और अनंत तीर्थ दोनों की बात कर रहा हूं, और चेन्नई जब गया तब तो थोड़ा पूरा अनजाना था, ना तो मेरा कोई इस परिवार के साथ परिचय था ना कुछ था, लेकिन बहुत गौरव से भक्ति से शान से प्यार से कहना चाहूंगा, प्यार से कहना चाहूंगा कि इस परिवार की 3 जनरेशन का जो समर्पण मिला उस समय से लेकर था आज दिन तक, पहले चतुर्मास में 3 पीढ़ियों की अठाइयां हुई थी। दादा की अठाई, दादी की अठाई, बेटे की अठाई, बेटा बहू की अठाई, पोते की अठाई। और आज भी पूरा हुई समर्पण, और एक मैं कुछ भी बोलूंगा तो कम है। ऐसा चोरडिया परिवार, भाई जी अजीत शाह पूरा परिवार आया हुआ है, उनके धर्म भावना का हम बहुत बहुत अनुमोदन करते हैं, बहुत गहराई से अनुमोदन करते हैं। बाबू सेठ के लिए तो जब वो आते हैं तो बाबू सेठ को तो लगता है कि कोई सीएम आया कि पीएम आया, मालूम नहीं है। नहीं परिवार, और अभी तो आपके नगर के बैजी है, नगर के बैजी
2: तो
0: है,
2: बैजी बाद में हुए ना,
0: बैजी बाद में हुए वो तो उनके। तो चरहारि मंगलम मरियत्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतोत्तम मंगलम चरहारि लघुत्तमा हरियंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवलता चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं भवज्जामि चार मंगल चार उत्तम चार शरण दुख हरणा सुख करना और न शरणा कोई जो भव्य प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पदोय विरुद्ध के। आज के लाभार्थी बाठिया परिवार और कर के लाभार्थी सतीश जी यश जी मित जी कांकरिया परिवार आ जाए।
2: भाई जी को, भाई जी को दो शब्द बोलना हो तो
0: अभी अभी लोग नहीं बैठे बैठे मजा नहीं ना बोलना। पोता रो जन्मदिन बैठे परिवार को आ जाओ। हाँ कांकरिया परिवार आ जाओ भाई, कांकरिया आ जाओ,
3: कांकरिया जाओ, यश
0: कर आ जाओ, आ जाओ, तू भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कहीं संकोच करे। अच्छा बहुत तू बुला ले रहे, मारे बुलान से नहीं आए हुए।
3: अटैच नहीं यश को, अटैच गुरुदेव को लेव नहीं गाता है।
0: हाँ बाबू सेठ, बाबू सेठ तुम्हें बोला ना, तुम से काम तुम्हें शुरू करा ना।
2: राष्ट्र संत आचार्य सम्राट पूज्य आनंद जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन, मंच पर विराजित महाराष्ट्र केसरी उपाध्याय प्रवर पूज्य प्रवीण श्री मरसाब एवं मधुर घंटी तृतीय श्री मरसाब के चरणों में कोटिशा वंदन। आज हमारे धर्म सभा में अरम विद्या के अध्यक्ष और गुरुदेव के प्रति असीम श्रद्धा और गुरुदेव जिन्हें मातोश्री का दर्जा देते ऐसे हमारे चेन्नई से पधारे हुए कांताबेन तथा उनके बहू जी प्रसन्ना जी चोरडिया और साथ में ताराबाई कुचा और हमारे प्रिय श्री अजीत जी चोरडिया चेन्नई से, ये पूरा परिवार यहाँ पर आज पधारा हुआ है और उनका मैं समर्पण चातुर्मास समिति की ओर से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और उनकी इसी तरह से भी इस चातुर्मास में दीपावली के बाद कृतज्ञता दिवस जिस दिन होगा उस दिन भी आपको विनंती करता हूँ कि आपको पधारना है। बाहर गांव से आए हुए गुरु भक्तों का समर्पण चातुर्मास समिति हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं सम्मान करती है। बाहर गांव से आए हुए गुरु भक्तों का गौतम प्रसाद जी की व्यवस्था पीछे गौतम प्रसाद जी हॉल में रखी गई है। सभी बाहर गांव से आए हुए अतिथियों को और जिसे एकासना है उनको विनंती है कि पीछे गौतम प्रसाद जी हॉल में आप पधार कर उसका लाभ लेवे। जय महावीर, जय अंग।

0: ली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह क्यूट।
1: राइट। मैं